0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनु

0: पोप लियो चौदहवें ने रविवार 30 अगस्त को भक्त समुदाय के साथ कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। पोप ने कहा,
1: cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात एवं शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि कैसे यीशु अपने चेलों को अपने आने वाले दुख का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि ईसा को यरूशलेम जाना होगा और नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों की ओर से बहुत दुख उठाना एवं मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। संत पापा ने कहा, वे जो कहते हैं वह एक जीतने वाले और ताकतवर मसीहा के शिष्यों की उम्मीदों से बहुत अलग है, जिनकी मदद से वे अपने दुश्मनों को हराएंगे और रौंदेंगे। उनके साथ बिताए गए समय के दौरान भी वे उनके कई कामों और बातों से आश्चर्यचकित थे, फिर भी यह नया संदेश उन सबसे बढ़कर है, खासकर पेत्रुस का अपनी असहमति जाहिर करना और यीशु को डांटते हुए कहना, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ऐसा आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय पहले पेत्रुस ने यीशु में मसीहा जीवित ईश्वर के पुत्र को पहचाना था, लेकिन अब वह जो सुनता है उससे हैरान हो जाता है और शायद निराश होकर उन्हें डांटता है, जो उसके अभी अभी किए गए विश्वास के सुंदर दावे से बिल्कुल विपरीत है। यह ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, हाँ मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं बचती। उनका जोश निश्चय ही सच्चे प्यार से प्रेरित था, लेकिन फिर भी यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: वास्तव में हमारे लिए भी ईश्वर के तरीकों को समझना और मानना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे हमारे तरीकों से बहुत दूर हों। तब विश्वास के सभी सोच के खिलाफ प्रलोभन आता है कि प्रभु ही गलत है, या इससे भी बुरा कि वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। इस अनिश्चितता का सामना करते हुए

0: पेत्रुस अपने जल्दबाजी में भी दो महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। संत पापा ने कहा,
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: पहला यह है कि ऐसे पलों में भी प्रभु के साथ अपनी बातचीत बंद ना करें। इसके बजाय हमें पूरे भरोसे के साथ उन्हें अपनी कठिनाइयां बतानी चाहिए और पूछना चाहिए कि वे हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा, कभी भी ईश्वर के काम का न्याय ना करें, बल्कि वे नम्रता और प्रार्थना के साथ सुने कि वे अपने कामों से हमें क्या दिखा रहे हैं, भले ही वे हमारी उम्मीदों के अनुसार ना हो। संत पापा ने कहा कि इसमें पहले प्रेरित की महानता भी साफ दिखती है। यीशु जवाब देते हैं, हट जा शैतान, और उन्हें तथा दूसरे शिष्यों को समझाते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्हें खुद का त्याग करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और उनके पीछे चलना होगा। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस यही करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद वे चुनौती स्वीकार करेंगे और मसीह के शब्दों के प्रति वफादार रहेंगे जीवन भर, यहाँ तक कि शहादत में भी, जिन्हें उन्होंने अपने उद्धारक के रूप में पहचाना है। इसलिए संत पापा ने कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास और प्रार्थना में संत पेत्रुस जैसे ही निष्ठा रखें और यीशु को विनम्रता से वही बताएं जो हम सच में महसूस करते हैं, उस समय भी जब हमारा दिल उलझन में हो। साथ ही हम भी पेत्रुस की तरह विनम्र बने और हमारी उम्मीदों से बढ़कर उसे स्वीकार करें जो वे हमसे मांगते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: चायुता मरिया che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: माता मरियम हमारी मदद करें, जो अपने बेटे यीशु के क्रूस के नीचे भी ईश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारी थीं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। सबसे पहले उन्होंने हैती में नरसंहार की घटना पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा,
1: हैती जुंगनो नोटिसे ड्रामाटिके डेल ग्रावे मासाक्रो परपेट्रातो अ केंस्कोफ।
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, हैती से केंस्कोफ में हुए भयंकर नरसंहार की दुखद खबर आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह करता हूं। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से दिल से अपील करता हूं कि वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हर तरह की हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करें। उसके बाद नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
0: मैं नेपाल एवं तिब्बत में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो घायल और लापता हैं, उनके परिवारों और राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी। प्रभु सभी की चिंता एवं दुख कम करें और लोगों को आवश्यक मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। फिर संत अगस्तीन के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा, शांति उस चमत्कारी रोटी की तरह है जो शिष्यों के हाथों में उगती थी जब वे उसे तोड़ते और बांटते थे। दुनिया भर में उन लोगों की संख्या बढ़े जो हिम्मत से शांति की रोटी तोड़ते और बांटते हैं, फूट को दूर करते हैं, न्याय को बढ़ावा देते, क्षमाशीलता का अभ्यास करते और सबकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद संत पापा ने याद दिलाया कि मंगलवार को हम सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना दिवस मनाते हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है जिसे विभिन्न ख्रिस्त समुदाय मनाते हैं, जिसके इस साल की विषय वस्तु है जीवित जल। पोप ने कहा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश को याद दिलाया, हमारे आम घर की देखभाल के लिए दिल बदलने की जरूरत है, ताकि जो चीज़ें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं काम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवन जल के रास्ते बन सकें और अपनी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। और अंत में संत पापा ने कस्तल गंदोल्फो के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini dei vari paesi.
0: उन्होंने पुलिस एवं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कस्तल गंदोल्फो में अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान उनकी मदद की, साथ ही तीर्थयात्रियों से उनकी मुलाकात को सुगम बनाया। पोप ने कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से देवदूत प्रार्थना में भाग लेने वाले विश्वासियों का भी अभिवादन किया एवं सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में हैं। उन्होंने शनिवार 29 अगस्त की शाम को कास्टेल गंडोल्फो की झील की माता मरियम गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। फिर अल्बानो झील पर झील की माता मरियम के पारंपरिक जुलूस में भाग लिया। मिसा के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने सुसमाचार में येसु के पानी पर चलने की कहानी पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को दुख, हिंसा और बंटवारे से भरी दुनिया की उल्टी हवाओं के बीच विश्वास में मजबूत रहने के लिए हिम्मत दी। अपने प्रवचन में संत पापा ने गलील झील के बारे में चर्चा की, जहां तूफान के बीच येसु पानी पर चलते हैं और हमें विश्वास रखने का आग्रह करते हैं। संत पापा ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, उससे कठिनाइयों का सामना करने पर निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जुलूस स्वयं इसकी याद दिलाती है, जिसमें येसु के पानी पर चलने, अपने भयभीत शिष्यों तक पहुंचने और तूफान को शांत करने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस लाने के चमत्कार को दर्शाया गया है। संत पापा ने याद दिलाया, ठीक उसी समय जब वे विपरीत हवाओं के कारण बहुत अधिक डरे हुए थे, प्रभु ने उनसे विश्वास करने, प्रार्थना करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें शांति मिल सके और उनके साथ मिलकर वांछित गंतव्य की ओर बढ़ते रहें। संत पापा ने बताया कि बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से मेलजोल के आदर्श को अपनाना, वही है जो येसु हमें सुसमाचार में सिखाते हैं। संत पापा ने पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाने वाले आसान इशारों के महत्व पर भी बातें की, जो विश्वास और भक्ति को नया करने का एक असरदार तरीका है। उन्होंने छोटे से स्थानीय समुदाय की देखभाल पर जोर दिया, जो पूरी कलीसिया को दिखाने के लिए पूरी गंभीरता से एकत्रित होती है। एक शरीर प्रार्थना में, भावनाओं में, इरादों में, हमारे एक साथ होने के व्यवस्थित और एक मत विकास में, उन्होंने कहा। इसलिए आइए हम आज रात येसु और मरियम, माँ और बेटे के करीब जाएं, ताकि हम एक होकर न केवल झील पर बल्कि दुनिया के सभी रातों में ईश्वर की मौजूदगी की एक भरोसा दिलाने वाली झलक और उनके प्यार की एक जबरदस्त गूंज बन सकें, जो हमें प्यार करने के लिए बुलाती है। पवित्र मिसा समाप्त होने के बाद संत पापा लियो 14वें और विश्वासीगण गिरजाघर से निकले और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में ट्रापिकाना तट तक ले गए। संत पापा लियो 14वें इतिहास में पहले परमाध्यक्ष बने जिन्होंने अल्बानो झील पर जुलूस में भाग लिया और अल्बानो झील पर लुंगो लागो कास्टेल गंडोल्फो एसोसिएशन की नाव फाल्को पर झील की माता मरियम की मूर्ति के सामने संत पापा ने करीब 25 मिनट तक समय बिताया। झील के किनारे संत पापा ने विश्वासियों के साथ प्रार्थना की। संत पापा ने कलीसिया और दुनिया के लोगों को माता मरियम को समर्पित किया, जिसे उन्होंने सुनने वाली और सेवा करने वाली महिला के रूप में वर्णित किया। संत पापा ने कहा कि माता मरिया बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों, परिवारों, नौजवानों और उन सभी लोगों का खास ध्यान रखे जो अकेलेपन में रहते हैं। उन लोगों का साथ दे जिनकी समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि वे हमेशा न्याय, आज़ादी, हर इंसान की गरिमा और सबकी भलाई को बढ़ावा दे सकें। संत पापा ने उन लोगों को भी याद किया जो झील के आसपास रहते और काम करते हैं और जो शांति की तलाश में वहां आते हैं। उधर नार्वे के स्वालबार्ड में कैथोलिक धर्माध्यक्ष के पहली बार पवित्र मिसा मनाने के 100 साल बाद कैथोलिक मौजूदगी और प्रेरितिक देखभाल के इन 100 सालों के लिए धन्यवाद देने हेतु विश्वासी लांग इयन बेन में एकत्रित हुए। टोनहैम के धर्माध्यक्ष एरिक वार्डन ने स्वालबार्ड गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। नार्वे के लुथरन कलीसिया के प्रतिनिधियों ने भी इस पवित्र मिसा समारोह में भाग लिया। अपने प्रवचन में धर्माध्यक्ष वार्डन ने इंसानी कमजोरी के बारे में क्रिस्तीय समझ को दिखाने के लिए स्वालबार्ड के मुश्किल नज़ारों और इतिहास का जिक्र किया।
उन्होंने याद किया कि एक सदी पहले स्वालबार्ड पहुंचना कितना अलग रहा होगा, जब समुद्र के रास्ते एक मुश्किल सफर के बाद, यह जानते हुए कि लगभग 900 किलोमीटर बर्फीला पानी इस आइलैंड को नॉर्वे के मुख्य जमीन से अलग करता था। आज उन्होंने मजाक में कहा, पर्यटक आज आराम से प्लेन से आते हैं और उनके पास 5G फोन होता है। हर वह चीज जो हमें कहीं और भटकाती है, वह यहाँ भी हमारे साथ आती है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक समाज ने अक्सर टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसानी कंट्रोल में यकीन करके कमजोरी को खत्म करने की कोशिश की है, फिर भी इंसानियत अब भी नए स्तर की अनिश्चितता के साथ जी रही है। उन्होंने कहा, हमें और ज्यादा आभासी कल्पना की जरूरत नहीं है, हमें असलियत की सही समझ की जरूरत है। उन्होंने बदलते माहौल और पिघलती बर्फ की ओर इशारा करते हुए कहा कि स्वालबार्ड खुद यह असलियत सिखा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक का विशाल नजारा इंसानियत को दुनिया और ईश्वर के सामने उसकी छोटी सोच को भी याद दिलाता है। यीशु के बलिदान को स्वालबार्ड तक सही मायने में पहुंचाने के लिए धर्माध्यक्ष जोहानस ओलाउस स्मिट 1926 में स्वालबार्ड गए थे और द्वीप समूह पर पहला कैथोलिक मिस्सा समारोह मनाया, और नेपाल में आए भूकंप और बाढ़ से मौतों का आंकड़ा अब 900 से ज्यादा हो गया है। पानी में डूबी सुरंगों, टूटी सड़कों और अलग थलग पड़े गांवों के बीच नेपाल में उन लोगों की तलाश जारी है जो बाढ़ से हुई तबाही में शायद बच गए हों। करीब 4,200 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि आपातकाल एक नए बड़े स्तर पर फैल रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं है, जहां पीने का पानी कम है और खराब या खराब स्रोत से बीमारी फैलने का डर है। कहा जा रहा है कि अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की टनल में लगभग 1,000 लोग फंसे हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनु

0: पोप लियो चौदहवें ने रविवार 30 अगस्त को भक्त समुदाय के साथ कस्टेल गंदोल्फो के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। पोप ने कहा,
1: cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात एवं शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि कैसे यीशु अपने चेलों को अपने आने वाले दुख का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि ईसा को यरूशलेम जाना होगा और नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों की ओर से बहुत दुख उठाना एवं मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। संत पापा ने कहा, वे जो कहते हैं वह एक जीतने वाले और ताकतवर मसीहा के शिष्यों की उम्मीदों से बहुत अलग है, जिनकी मदद से वे अपने दुश्मनों को हराएंगे और रौंदेंगे। उनके साथ बिताए गए समय के दौरान भी वे उनके कई कामों और बातों से आश्चर्यचकित थे, फिर भी यह नया संदेश उन सबसे बढ़कर है, खासकर पेतरुस का अपनी असहमति जाहिर करना और यीशु को डांटते हुए कहना, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ऐसा आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय पहले पेतरुस ने यीशु में मसीहा जीवित ईश्वर के पुत्र को पहचाना था, लेकिन अब वह जो सुनता है उससे हैरान हो जाता है और शायद निराश होकर उन्हें डांटता है, जो उसके अभी अभी किए गए विश्वास के सुंदर दावे से बिल्कुल विपरीत है। यह ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, हाँ मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं बचती। उनका जोश निश्चय ही सच्चे प्यार से प्रेरित था, लेकिन फिर भी यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: वास्तव में हमारे लिए भी ईश्वर के तरीकों को समझना और मानना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे हमारे तरीकों से बहुत दूर हों। तब विश्वास के सभी सोच के खिलाफ प्रलोभन आता है कि प्रभु ही गलत है, या इससे भी बुरा कि वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। इस अनिश्चितता का सामना करते हुए पेतरुस अपनी जल्दबाजी में भी दो महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। संत पापा ने कहा,
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: पहला यह है कि ऐसे पलों में भी प्रभु के साथ अपनी बातचीत बंद ना करें। इसके बजाय हमें पूरे भरोसे के साथ उन्हें अपनी कठिनाइयां बतानी चाहिए और पूछना चाहिए कि वे हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा, कभी भी ईश्वर के काम का न्याय ना करें, बल्कि वे नम्रता और प्रार्थना के साथ सुने कि वे अपने कामों से हमें क्या दिखा रहे हैं, भले ही वे हमारी उम्मीदों के अनुसार ना हो। संत पापा ने कहा कि इसमें पहले प्रेरित की महानता भी साफ दिखती है। यीशु जवाब देते हैं, हट जा शैतान, और उन्हें तथा दूसरे शिष्यों को समझाते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्हें खुद का त्याग करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और उनके पीछे चलना होगा। संत पापा ने कहा, संत पेतरुस यही करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद वे चुनौती स्वीकार करेंगे और मसीह के शब्दों के प्रति वफादार रहेंगे जीवन भर, यहाँ तक कि शहादत में भी, जिन्हें उन्होंने अपने उद्धारक के रूप में पहचाना है। इसलिए संत पापा ने कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास और प्रार्थना में संत पेतरुस जैसे ही निष्ठा रखें और यीशु को विनम्रता से वही बताएं जो हम सच में महसूस करते हैं, उस समय भी जब हमारा दिल उलझन में हो। साथ ही हम भी पेतरुस की तरह विनम्र बने और हमारी उम्मीदों से बढ़कर उसे स्वीकार करें जो वे हमसे मांगते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: चयुता मरिया che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: माता मरियम हमारी मदद करें, जो अपने बेटे यीशु के क्रूस के नीचे भी ईश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारी थीं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। सबसे पहले उन्होंने हैती में नरसंहार की घटना पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा,
1: हैती जुंगनो नोटिसे ड्रामाटिके डेल ग्रावे मासाक्रो परपेट्रातो अ केंस्कोफ।
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, हैती से केंस्कोफ में हुए भयंकर नरसंहार की दुखद खबर आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह करता हूं। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से दिल से अपील करता हूं कि वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हर तरह की हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करें। उसके बाद नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
0: मैं नेपाल एवं तिब्बत में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो घायल और लापता हैं, उनके परिवारों और राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी। प्रभु सभी की चिंता एवं दुख कम करें और लोगों को आवश्यक मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। फिर संत अगस्तीन के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा, शांति उस चमत्कारी रोटी की तरह है जो शिष्यों के हाथों में उगती थी जब वे उसे तोड़ते और बांटते थे। दुनिया भर में उन लोगों की संख्या बढ़े जो हिम्मत से शांति की रोटी तोड़ते और बांटते हैं, फूट को दूर करते हैं, न्याय को बढ़ावा देते, क्षमाशीलता का अभ्यास करते और सबकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद संत पापा ने याद दिलाया कि मंगलवार को हम सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना दिवस मनाते हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है जिसे विभिन्न ख्रिस्त समुदाय मनाते हैं, जिसके इस साल की विषय वस्तु है जीवित जल। पोप ने कहा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश को याद दिलाया, हमारे आम घर की देखभाल के लिए दिल बदलने की जरूरत है, ताकि जो चीज़ें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं काम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवन जल के रास्ते बन सकें और अपनी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। और अंत में संत पापा ने कस्तल गंदोल्फो के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi.
0: उन्होंने पुलिस एवं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कस्तल गंदोल्फो में अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान उनकी मदद की, साथ ही तीर्थयात्रियों से उनकी मुलाकात को सुगम बनाया। पोप ने कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से देवदूत प्रार्थना में भाग लेने वाले विश्वासियों का भी अभिवादन किया एवं सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में हैं। उन्होंने शनिवार 29 अगस्त की शाम को कास्टेल गंडोल्फो की झील की माता मरियम गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। फिर अल्बानो झील पर झील की माता मरियम के पारंपरिक जुलूस में भाग लिया। मिसा के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने सुसमाचार में यीशु के पानी पर चलने की कहानी पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को दुख, हिंसा और बंटवारे से भरी

बहुत अधिक डरे हुए थे, प्रभु ने उनसे विश्वास करने, प्रार्थना करने का आग्रह किया ताकि उन्हें शांति मिल सके और उनके साथ मिलकर वांछित गंतव्य की ओर बढ़ते रहें। संत पापा ने बताया कि बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से मेलजोल के आदर्श को अपनाना वही है जो यीशु हमें सुसमाचार में सिखाते हैं। संत पापा ने पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाने वाले आसान इशारों के महत्व पर भी बातें की, जो विश्वास और भक्ति को नया करने का एक असरदार तरीका है। उन्होंने छोटे से स्थानीय समुदाय की देखभाल पर जोर दिया, जो पूरी कलीसिया को दिखाने के लिए पूरी गंभीरता से एकत्रित होती है। एक शरीर प्रार्थना में, भावनाओं में, इरादों में, हमारे एक साथ होने के व्यवस्थित और एक मत विकास में, उन्होंने कहा। इसलिए आइए हम आज रात यीशु और मरियम, माँ और बेटे के करीब जाएं, ताकि हम एक होकर न केवल झील पर बल्कि दुनिया के सभी रातों में ईश्वर की मौजूदगी की एक भरोसा दिलाने वाली झलक और उनके प्यार की एक जबरदस्त गूंज बन सकें जो हमें प्यार करने के लिए बुलाती है। पौत्र मिसा समाप्त होने के बाद संत पापा लियो 14वें और विश्वासीगण गिरजा घर से निकले और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में ट्रापिकाना तट तक ले गए। संत पापा लियो 14वें इतिहास में पहले परमाध्यक्ष बने जिन्होंने अल्बानो झील पर जुलूस में भाग लिया और अल्बानो झील पर लुंगो लागो कास्टेल गंडोल्फो एसोसिएशन की नाव फाल्को पर झील की माता मरियम की मूर्ति के सामने संत पापा ने करीब 25 मिनट तक समय बिताया। झील के किनारे संत पापा ने विश्वासियों के साथ प्रार्थना की। संत पापा ने कलीसिया और दुनिया के लोगों को माता मरियम को समर्पित किया, जिसे उन्होंने सुनने वाली और सेवा करने वाली महिला के रूप में वर्णित किया। संत पापा ने कहा कि माता मरिया बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों, परिवारों, नौजवानों और उन सभी लोगों का खास ध्यान रखे जो अकेलेपन में रहते हैं। उन लोगों का साथ दे जिनकी समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि वे हमेशा न्याय, आज़ादी, हर इंसान की गरिमा और सबकी भलाई को बढ़ावा दे सकें। संत पापा ने उन लोगों को भी याद किया जो झील के आसपास रहते और काम करते हैं और जो शांति की तलाश में वहां आते हैं। उधर नार्वे के स्वालबार्ड में कैथोलिक धर्माध्यक्ष के पहली बार पौत्र मिसा मनाने के 100 साल बाद कैथोलिक मौजूदगी और प्रेरितिक देखभाल के इन 100 सालों के लिए धन्यवाद देने हेतु विश्वासी लांग इयन बेन में एकत्रित हुए। टोनहैम के धर्माध्यक्ष एरिक वार्डन ने स्वालबार्ड गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। नार्वे के लुथरन कलीसिया के प्रतिनिधियों ने भी इस पवित्र मिसा समारोह में भाग लिया। अपने प्रवचन में धर्माध्यक्ष वार्डन ने इंसानी कमजोरी के बारे में क्रिस्तीय समझ को दिखाने के लिए स्वालबार्ड के मुश्किल नज़ारों और इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने याद किया कि एक सदी पहले स्वालबार्ड पहुंचना कितना अलग रहा होगा, जब समुद्र के रास्ते एक मुश्किल सफर के बाद यह जानते हुए कि लगभग 900 किलोमीटर बर्फीला पानी इस आइलैंड को नार्वे के मुख्य जमीन से अलग करता था। आज उन्होंने मजाक में कहा, पर्यटक आज आराम से प्लेन से आते हैं और उनके पास 5G फोन होता है। हर वह चीज जो हमें कहीं और भटकाती है वह यहाँ भी हमारे साथ आती है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक समाज ने अक्सर टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसानी कंट्रोल में यकीन करके कमजोरी को खत्म करने की कोशिश की है, फिर भी इंसानियत अब भी नए स्तर की अनिश्चितता के साथ जी रही है। उन्होंने कहा, हमें और ज्यादा आभासी कल्पना की जरूरत नहीं है, हमें असलियत की सही समझ की जरूरत है। उन्होंने बदलते माहौल और पिघलती बर्फ की ओर इशारा करते हुए कहा कि स्वालबार्ड खुद यह असलियत सिखा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक का विशाल नज़ारा इंसानियत को दुनिया और ईश्वर के सामने उसकी छोटी सोच को भी याद दिलाता है। यीशु के बलिदान को स्वालबार्ड तक सही मायने में पहुंचाने के लिए धर्माध्यक्ष जोहानस ओलाव स्मिट 1926 में स्वालबार्ड गए थे और द्वीप समूह पर पहला कैथोलिक मिसा समारोह मनाया।
और नेपाल में आए भूकंप और बाढ़ से

मौतों का आंकड़ा अब 900 से ज्यादा हो गया है। पानी में डूबी सुरंगों, टूटी सड़कों और अलग थलग पड़े गांवों के बीच नेपाल में उन लोगों की तलाश जारी है जो बाढ़ से हुई तबाही में शायद बच गए हों। करीब 4,200 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि आपातकाल एक नए बड़े स्तर पर फैल रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं है, जहां पीने का पानी कम है और खराब या खराब स्रोत से बीमारी फैलने का डर है। कहा जा रहा है कि अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की टनल में लगभग 1,000 लोग फंसे हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दुखद संदर्भ में और उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुए, संत पापा पियूस 11वें की शिक्षा ने सामाजिक धर्म शिक्षा के विकास में एक विशेष सहयोग प्रदान किया। यह विशेषकर उनके ख्रीस्त जयंती रेडियो संदेशों में, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य को रेखांकित किया जो न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की पहचान पर आधारित था। उन्होंने इस बात की पहचान की कि अत्यधिक आर्थिक असमानता देशों के मध्य युद्ध भड़काने के मुख्य कारणों में से एक है। इस संदर्भ में 3 दिशा निर्देश हमारे समय में खास हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक शक्ति के नए रूपों को बढ़ाती असमानताओं को चिन्हित करती है। कानून को हितों से ऊपर रखने की जरूरत, इस बात की सचेतना कि आर्थिक असमानताएं हिंसा और तनाव को जन्म देती हैं। संघों में नेटवर्क की आवश्यकता, जो व्यक्तियों और देश के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के योग्य होती है। ये दिशा निर्देश हमें महत्वपूर्ण मापदंड प्रदान करते हैं जो हमें सामाजिक धर्म सिद्धांत के वैश्विक आयाम को परिभाषित करने और एक न्यायपूर्ण तथा शांतिमय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न करने में मददगार होते हैं। श्रोताओं, कलिसियाई सामाजिक धर्म शिक्षा के नए काल की शुरुआत संत पापा योहन 13वें से हुई, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अधिकारों की भाषा के एक नए आयाम को जोर दिया। मातेर ए मजिस्ट्रा में उन्होंने ख्रिस्तीय विश्वास को एक ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया जो स्वर्ग और पृथ्वी का मेल करा सकती है। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि कलिसिया की मुख्य प्रेरिताई पवित्रीकरण और अनंत चीजों की घोषणा करनी है। वह लोगों के दैनिक जीवन में ठोस बातों को नजरअंदाज नहीं करती है और वह अपने को लोगों के हर असल भलाई से चिंतित पाती है। मानवता की एक एकतामयी दृष्टि पर आधारित संत पापा योहन 13वें ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक जीवन नागरिकों और समूहों की पहल के मध्य एक संतुलन की जरूरत है जो अपने में व्यवस्थित एक साथ कार्य करने को बुलाए जाते हैं और राज्य के कार्य को चाहिए कि वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वों का हनन किए बिना उनकी देखरेख और सहयोग करे। अतः उन्होंने कार्य के लिए उचित वेतन, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और देशों के मध्य असमानता की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कुछ सालों के बाद पाचिम इन 13 संत पापा जॉन 13वें ने पहली बार न केवल विश्वासियों को बल्कि सभी नेक दिली लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की मान्यता से जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के लिए एक दिशा निर्देशन का सुझाव प्रस्तुत किया जो सत्य, न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित था। वर्तमान समय जहां हम युद्धों के विस्तार और नए रूप में वैश्विक परस्पर निर्भरता को पाते हैं, उनके विचारों की विशेष महत्वपूर्णता बनी रहती है। वैश्विक परिदृश्य में उनकी अपील, मानव अधिकारों के संबंध में उनका साझा कार्य और उनका विश्वास कि स्थायी रूप में बने रहने वाली शांति संस्थानों और लोगों के मध्य संबंधों की मांग करती है जो कि हर मानव के सम्मान से प्रेरित है। श्रोताओं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसिया को समकालीन विश्व में अपनी समझ के संबंध में एक नया मोड़ प्रदान किया। प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गॉडियम एट स्पेस में धर्म सभा ने कलिसिया की एक निशानी को प्रस्तुत किया जो मानवता के निकट रहती, दुनिया के संग अपने को संलग्न करती और अमूर्त विचारों के बदले इतिहास की ठोस सच्चाइयों पर चिंतन करने हेतु अपने को समर्पित करती है। हम इसके पदों में विवाह और परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन, राजनीतिक समुदाय, युद्ध और शांति के वृहद मुद्दों को संबोधित होता पाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक और संस्थागत संरचनाएं सिर्फ उसी हद तक सही हैं जहां तक वे व्यक्ति के पूरे विकास में मदद करें और सभी की जिम्मेदारी में सहभागिता को बढ़ावा दें। धर्म सभा की सामाजिक धर्म शिक्षा की महत्वपूर्णता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वह अपने विषयों से संबंधित बिंदु पर विचार हेतु अपने क्षितिजों को खुला रखे, बल्कि आत्मपरक हेतु उसका तरीका जो हमें ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार और मानव विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के दिशा निर्देश अनुसार परिभाषित करने हेतु निमंत्रण दे। यह शैली हमारे लिए इस बात को व्यक्त करती है कि विश्व के संग वार्ता करना कलिसिया के लिए कोई रणनीति विकल्प नहीं है, लेकिन यह उसकी प्रेरिताई की एक ठोस अभिव्यक्ति है, क्योंकि सुसमाचार जैसे कि खमीर अपने में समाज की संरचनाओं को अंदर से परिवर्तित करने और उसके मांगों को एक वृहद मानवता हेतु बढ़ाने के योग्य बनाता है। डिग्निटातिस ह्यूमाने की घोषणा को हम इस संदर्भ में लागू कर सकते हैं जो मानव सम्मान पर आधारित है, जिससे नियम के आधार पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को उनके अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करने या उन्हें निजी या सार्वजनिक रूप से सच्चाई की खोज करने और उसे मानने से रोका जाता है। यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांत को व्यक्तिगत और विभिन्नता वाले शांतिपूर्ण समाजों की सुरक्षा हेतु सुनिश्चित करने में निरंतर बढ़ावा देता है। श्रोताओं, संत पापा पॉल छठवें के परम धर्माध्यक्षीय काल के दौरान शांति की समझ इस रूप में उभर कर आई जिसे सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति स्वरूप नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इसे संपूर्ण मानव विकास के आधार पर देखा गया। पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो में विकास को उन्होंने कम मानवीय स्थिति से जीवन के लिए अधिक मानवीय स्थितियों के रूप में चर्चा की। इसे उन्होंने आगे एक प्रक्रिया के रूप में समझा जो हर व्यक्ति और संपूर्ण व्यक्ति के विकास की चिंता करता है, अर्थात व्यक्ति का हर आयाम और बिना किसी अपवाद के सभी लोगों का। यही कारण है कि संत पापा पॉल छठवें ने विकास के इस स्वरूप को सच्चाई के रूप में समझा जिसकी संज्ञा शांति के रूप में दी गई, क्योंकि यह अन्याय और संघर्ष को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखता है और सबों के लिए एक अधिक सम्मानजनक अवसरों को उत्पन्न करता है। परम धर्म पीठीय समिति यूस्तातिस एत पक्स न्याय और शांति को इस आलोक में देखने की जरूरत है जो इस विचार को कलिसिया के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करती है। साथ ही अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ते अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत है और ऐसी नीतियों की आवश्यकता जो सही में सबों के लिए ज्यादा मानवीय जीवन जीने की स्थिति को प्रोत्साहित करती हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 1 सितंबर को सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर पोप लियो 14वें कस्तिल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी की माता मरियम के उद्यान में ख्रिस्त त्याग अर्पित करेंगे। ख्रिस्त त्याग शाम 6 बजे शुरू होगा। यह ख्रिस्त त्याग सृष्टि की देखभाल के लिए हर साल मनाए जाने वाले प्रार्थना दिवस एवं सृष्टि के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो प्रार्थना और हमारे आम घर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की एक ख्रिस्त एकता यात्रा है। सृष्टि के मौसम का यह समय 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व एवं उनके निधन की 800वीं सालगिरह पर समाप्त होगा। इस मौसम में कलीसिया और दूसरे ख्रिस्ती समुदायों को प्रार्थना, मन परिवर्तन और सृष्टि की देखभाल के ठोस कामों के जरिए दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से जगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। पोप लियो 14वें ने इस अवसर पर प्रकाशित अपने एक संदेश में लिखा, आज हम सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है, जिसे विभिन्न ख्रिस्ती समुदाय मनाते हैं। इस साल इसकी विषय वस्तु है जीवित जल। संत पापा ने आगे लिखा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश में याद दिलाया है, हमारे आम घर की देखभाल के लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है, ताकि जो चीजें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवित जल के माध्यम बन सकें और हमारी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। पोप लियो 14वें ने सितंबर माह के लिए अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई में पानी की देखभाल के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। पोप की सितंबर माह की प्रार्थना हमें पानी को ईश्वर के वरदान एवं बिना किसी सीमा के सभी के लिए अधिकार के रूप में देखने हेतु प्रेरित करती है। पोप ने अपनी प्रार्थना में पानी को फलदायी, ताजगी और उम्मीद का स्रोत बताया है, जो लाखों लोगों के लिए एक दुर्लभ, असुरक्षित एवं पहुंच से बाहर की चीज हो गई है। यही कारण है कि पोप लियो 14वें सितंबर महीने के लिए अपनी प्रार्थना को पानी की देखभाल के लिए समर्पित कर रहे हैं। जब सृष्टि का मौसम शुरू हो रहा है, अपने प्रार्थना नेटवर्क के माध्यम से पोप विश्वासियों एवं सभी भले लोगों को अपनी प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि लोग पानी को आभार, न्याय एवं जिम्मेदारी के साथ बचाना सीखें और इसे बिना किसी सीमा के अधिकार मानें। अपनी प्रार्थना में पोप लियो पानी के वरदान के लिए जीवन के ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, जो उनकी कृपा एवं प्यार का प्रतीक है, जो बपतिस्मा के माध्यम से हमें नया बनाता है। संत पापा माफी मांगते हैं, क्योंकि इसे एक चीज बना दिया गया है और हम भूल गए हैं कि यह एक विश्वव्यापी उपहार है, बिना किसी सीमा के सभी लोगों के लिए। वे उन भाई बहनों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है, जो इसे ढूंढने के लिए मीलों चलते हैं और जो इसकी कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। पोप की प्रार्थना इन शब्दों के साथ समाप्त होती है, पवित्र आत्मा विश्वासियों को आवश्यक चीजों के तीर्थयात्री में बदल दे, जो सादगी से जी सकें, बर्बादी और प्रदूषण का विरोध कर सकें और हर व्यक्ति के बिना डर एवं बिना किसी भेदभाव के पीने के अधिकार की रक्षा कर सकें। कस्तिल गंदोल्फो में 31 अक्टूबर को एक मीटिंग के दौरान पीड़ा से राहत के लिए बने घर के निरीक्षक आयोग ने पोप लियो 14वें के साथ पिछले मई महीना में स्थापित होने के बाद किए गए कामों को साझा किया। पोप लियो 14वें ने 31 अक्टूबर को कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरितिक आवास में कासा सोलिएफो दे ला सोफ्रेंसा या पीड़ा से राहत के लिए बना घर फाउंडेशन के निदेशक और निरीक्षक के लिए स्थापित आयोग का स्वागत किया। पीड़ा से राहत के लिए बना घर दक्षिणी इटली के सन जुआनी रोतोंदो में पेत्रोल चीना के संत पियो के सपने को साकार करने के लिए बना एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। आयोग की स्थापना 27 मई 2026 को पोप लियो 14वें द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रलेख के माध्यम से की गई थी। मीटिंग के दौरान पोप ने आयोग के काम की प्रगति का अवलोकन किया, फाउंडेशन की आर्थिक और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण पर ध्यान दिया और सन जुआनी रोतोंदो में कासा सोलिएफो दे ला सोफ्रेंसा अस्पताल की पुनर्स्थापना को देखते हुए इसके काम की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे सही समाधान की पहचान की गई। आयोग ने अपनी गतिविधि का मार्गदर्शन करने वाली मुख्य प्राथमिकताओं के बारे बताया, स्टाफ के साथ संबंध को स्थिर करना,
इटालियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग को मजबूत करना, आवश्यक समाधान हासिल करना और प्रमुख उत्तरदायित्वों को धीरे धीरे कम करना गतिविधियां संस्थापक प्रलेख द्वारा कमीशन को दिए गए आदेश का हिस्सा है, जिसका मकसद अस्पताल सेवा को आगे बढ़ाना और इसके संस्थापक के करिश्मे को बनाए रखते हुए सतत स्थिति को वापस लाना एवं पुनर्स्थापना योजना को लागू करना है। पोप लियो ने कमीशन द्वारा अब तक किए गए काम को ध्यान से सुना और जो रास्ता अपनाया गया है उस पर करीब से चलने के उनके पक्के इरादे को पुष्ट किया। भारत में लातिन कैथोलिक कलीसिया के जीवन, मिशन एवं प्रेरिता से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन और एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष तथा गोवा एवं दमान के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ सीसीबीआई के उपाध्यक्ष एवं बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सीसीबीआई के महासचिव और रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद एवं सीसीबीआई के उप सचिव डॉक्टर फादर स्टीफन अलाथरा भी थे। यह मुलाकात संत अगस्टीन के पर्व के दिन हुई, जो अगस्टीनियन धर्म संघ के संरक्षक संत हैं और जिससे संत पापलियो चौदहवें भी जुड़े हैं। सीबीसीआई प्रतिनिधियों ने पोप को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित की। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने संत पापलियो चौदहवें को उपहार स्वरूप ओक की लकड़ी से बनी एक पार्टी का भेंट की, जिसमें यीशु ख्रिस्त को भारत की कलीसिया से जुड़े 12 संतों से घिरा हुआ दिखाया गया है। पाटिका पर जिन संतों की तस्वीर है वे हैं प्रेरित संत थॉमस, प्रेरित संत बर्थोलोमियो, संत फ्रांसिस जेवियर, संत गोंजालो गार्सिया, संत जोसेफ वास, संत जॉन दी ब्रिटो, संत देव सहायम, कलकत्ता के संत तेरेसा, संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास चावरा, संत उफ्रेसिया और संत मरिया थ्रेसिया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, यह एक बहुत ही

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दुखद संदर्भ में और उसके बाद जो पुनर्निर्माण हुए, संत पापा पियूस 11वें की शिक्षा ने सामाजिक धर्म शिक्षा के विकास में एक विशेष सहयोग प्रदान किया। यह विशेषकर उनके ख्रिस्त जयंती रेडियो संदेशों में, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य को रेखांकित किया जो न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की पहचान पर आधारित था। उन्होंने इस बात की पहचान की कि अत्यधिक आर्थिक असमानता देशों के मध्य युद्ध भड़काने के मुख्य कारणों में से एक है। इस संदर्भ में 3 दिशा निर्देश हमारे समय में खास हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक शक्ति के नए रूपों को बढ़ाती असमानताओं को चिन्हित करती है। कानून को हितों से ऊपर रखने की जरूरत, इस बात की सचेतना कि आर्थिक असमानताएं हिंसा और तनाव को जन्म देती हैं, संघों में नेटवर्क की आवश्यकता जो व्यक्तियों और देश के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के योग्य होती है। ये दिशा निर्देश हमें महत्वपूर्ण मापदंड प्रदान करते हैं जो हमें सामाजिक धर्म सिद्धांत के वैश्विक आयाम को परिभाषित करने और एक न्यायपूर्ण तथा शांतिमय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न करने में मददगार होते हैं। श्रोताओं, कलिसियाई सामाजिक धर्म शिक्षा के नए काल की शुरुआत संत पापा योहन 13वें से हुई, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अधिकारों की भाषा के एक नए आयाम को जोर दिया। मातेर ए मजिस्ट्रा में उन्होंने ख्रिस्तीय विश्वास को एक ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया जो स्वर्ग और पृथ्वी का मेल करा सकती है। उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि कलिसिया की मुख्य प्रेरिताई पवित्रीकरण और अनंत चीजों की घोषणा करनी है। वह लोगों के दैनिक जीवन में ठोस बातों को नजरअंदाज नहीं करती है और वह अपने को लोगों के हर असल भलाई से चिंतित पाती है। मानवता की एक एकतामयी दृष्टि पर आधारित संत पापा योहन 13वें ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक जीवन नागरिकों और समूहों की पहल के मध्य एक संतुलन की जरूरत है जो अपने में व्यवस्थित एक साथ कार्य करने को बुलाए जाते हैं और राज्य के कार्य को चाहिए कि वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वों का हनन किए बिना उनकी देखरेख और सहयोग करे। अतः उन्होंने कार्य के लिए उचित वेतन, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और देशों के मध्य असमानता की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कुछ सालों के बाद पाचिम इन 13 संत पापा जॉन 13वें ने पहली बार न केवल विश्वासियों को बल्कि सभी नेक दिली लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की मान्यता से जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के लिए एक दिशा निर्देशन का सुझाव प्रस्तुत किया जो सत्य, न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित था। वर्तमान समय जहां हम युद्धों के विस्तार और नए रूप में वैश्विक परस्पर निर्भरता को पाते हैं, उनके विचारों की विशेष महत्वपूर्णता बनी रहती है। वैश्विक परिदृश्य में उनकी अपील, मानव अधिकारों के संबंध में उनका साझा कार्य और उनका विश्वास कि स्थायी रूप में बने रहने वाली शांति संस्थानों और लोगों के मध्य संबंधों की मांग करती है जो कि हर मानव के सम्मान से प्रेरित है। श्रोताओं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसिया को समकालीन विश्व में अपनी समझ के संबंध में एक नया मोड़ प्रदान किया। प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गॉडियम एट स्पेस में धर्म सभा ने कलिसिया की एक निशानी को प्रस्तुत किया जो मानवता के निकट रहती, दुनिया के संग अपने को संलग्न करती और अमूर्त विचारों के बदले इतिहास की ठोस सच्चाइयों पर चिंतन करने हेतु अपने को समर्पित करती है। हम इसके पदों में विवाह और परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन, राजनीतिक समुदाय, युद्ध और शांति के वृहद मुद्दों को संबोधित होता पाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक और संस्थागत संरचनाएं सिर्फ उसी हद तक सही हैं जहां तक वे व्यक्ति के पूरे विकास में मदद करें और सभी की जिम्मेदारी में सहभागिता को बढ़ावा दें। धर्म सभा की सामाजिक धर्म शिक्षा की महत्वपूर्णता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वह अपने विषयों से संबंधित बिंदु पर विचार हेतु अपने क्षितिजों को खुला रखे, बल्कि आत्मपरक हेतु उसका तरीका जो हमें ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार और मानव विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के दिशा निर्देश अनुसार परिभाषित करने हेतु निमंत्रण दे। यह शैली हमारे लिए इस बात को व्यक्त करती है कि विश्व के संग वार्ता करना कलिसिया के लिए कोई रणनीति विकल्प नहीं है, लेकिन यह उसकी प्रेरिताई की एक ठोस अभिव्यक्ति है, क्योंकि सुसमाचार जैसे कि खमीर अपने में समाज की संरचनाओं को अंदर से परिवर्तित करने और उसके मांगों को एक वृहद मानवता हेतु बढ़ाने के योग्य बनाता है। डिग्निटातिस ह्यूमाने की घोषणा को हम इस संदर्भ में लागू कर सकते हैं जो मानव सम्मान पर आधारित है, जिससे नियम के आधार पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को उनके अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करने या उन्हें निजी या सार्वजनिक रूप से सच्चाई की खोज करने और उसे मानने से रोका जाता है। यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक धर्म शिक्षा के सिद्धांत को व्यक्तिगत और विभिन्नता वाले शांतिपूर्ण समाजों की सुरक्षा हेतु सुनिश्चित करने में निरंतर बढ़ावा देता है। श्रोताओ, संत पापा पॉल छठवें के परम धर्माध्यक्षीय काल के दौरान शांति की समझ इस रूप में उभर कर आई जिसे सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति स्वरूप नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इसे संपूर्ण मानव विकास के आधार पर देखा गया। पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो में विकास को उन्होंने कम मानवीय स्थिति से जीवन के लिए अधिक मानवीय स्थितियों के रूप में चर्चा की। इसे उन्होंने आगे एक प्रक्रिया के रूप में समझा जो हर व्यक्ति और संपूर्ण व्यक्ति के विकास की चिंता करता है, अर्थात व्यक्ति का हर आयाम और बिना किसी अपवाद के सभी लोगों का। यही कारण है कि संत पापा पॉल छठवें ने विकास के इस स्वरूप को सच्चाई के रूप में समझा जिसकी संज्ञा शांति के रूप में दी गई, क्योंकि यह अन्याय और संघर्ष को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखता है और सबों के लिए एक अधिक सम्मानजनक अवसरों को उत्पन्न करता है। परम धर्म पीठीय समिति यूस्तातिस एत पक्स न्याय और शांति को इस आलोक में देखने की जरूरत है जो इस विचार को कलिसिया के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करती है। साथ ही अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ते अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत है और ऐसी नीतियों की आवश्यकता जो सही में सबों के लिए ज्यादा मानवीय जीवन जीने की स्थिति को प्रोत्साहित करती हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 1 सितंबर को सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर पोप लियो 14वें कस्तिल गंदोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी की माता मरियम के उद्यान में क्रिस त्याग अर्पित करेंगे। क्रिस त्याग शाम 6 बजे शुरू होगा। यह क्रिस त्याग सृष्टि की देखभाल के लिए हर साल मनाए जाने वाले प्रार्थना दिवस एवं सृष्टि के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो प्रार्थना और हमारे आम घर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की एक ख्रिस्ती एकता यात्रा है। सृष्टि के मौसम का यह समय 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व एवं उनके निधन की 800वीं सालगिरह पर समाप्त होगा। इस मौसम में कलीसिया और दूसरे ख्रिस्ती समुदायों को प्रार्थना, मन परिवर्तन और सृष्टि की देखभाल के ठोस कामों के जरिए दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से जगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। पोप लियो 14वें ने इस अवसर पर प्रकाशित अपने एक संदेश में लिखा, आज हम सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है, जिसे विभिन्न ख्रिस्ती समुदाय मनाते हैं। इस साल इसकी विषय वस्तु है जीवित जल। संत पापा ने आगे लिखा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश में याद दिलाया है, हमारे आम घर की देखभाल के लिए हृदय परिवर्तन की जरूरत है, ताकि जो चीजें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं, उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवित जल के माध्यम बन सकें और हमारी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। पोप लियो 14वें ने सितंबर माह के लिए अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई में पानी की देखभाल के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है। पोप की सितंबर माह की प्रार्थना हमें पानी को ईश्वर के वरदान एवं बिना किसी सीमा के सभी के लिए अधिकार के रूप में देखने हेतु प्रेरित करती है। पोप ने अपनी प्रार्थना में पानी को फलदायी, ताजगी और उम्मीद का स्रोत बताया है, जो लाखों लोगों के लिए एक दुर्लभ, असुरक्षित एवं पहुंच से बाहर की चीज हो गई है। यही कारण है कि पोप लियो 14वें सितंबर महीने के लिए अपनी प्रार्थना को पानी की देखभाल के लिए समर्पित कर रहे हैं, जब सृष्टि का मौसम शुरू हो रहा है। अपने प्रार्थना नेटवर्क के माध्यम से पोप विश्वासियों एवं सभी भले लोगों को अपनी प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि लोग पानी को आभार, न्याय एवं जिम्मेदारी के साथ बचाना सीखें और इसे बिना किसी सीमा के अधिकार माने। अपनी प्रार्थना में पोप लियो पानी के वरदान के लिए जीवन के ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, जो उनकी कृपा एवं प्यार का प्रतीक है, जो बपतिस्मा के माध्यम से हमें नया बनाता है। संत पापा माफी मांगते हैं, क्योंकि इसे एक चीज बना दिया गया है और हम भूल गए हैं कि यह एक विश्वव्यापी उपहार है, बिना किसी सीमा के सभी लोगों के लिए। वे उन भाई बहनों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है, जो इसे ढूंढने के लिए मीलों चलते हैं और जो इसकी कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। पोप की प्रार्थना इन शब्दों के साथ समाप्त होती है, पवित्र आत्मा विश्वासियों को आवश्यक चीजों के तीर्थयात्री में बदल दे, जो सादगी से जी सकें, बर्बादी और प्रदूषण का विरोध कर सकें और हर व्यक्ति के बिना डर एवं बिना किसी भेदभाव के पीने के अधिकार की रक्षा कर सकें। कस्तिल गंदोल्फो में 31 अक्टूबर को एक मीटिंग के दौरान पीड़ा से राहत के लिए बने घर के निरीक्षक आयोग ने पोप लियो 14वें के साथ पिछले मई महीना में स्थापित होने के बाद किए गए कामों को साझा किया। पोप लियो 14वें ने 31 अक्टूबर को कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरित आवास में कासा सोलेफो दे ला सोफ्रेंसा या पीड़ा से राहत के लिए बना घर फाउंडेशन के निदेशक और निरीक्षक के लिए स्थापित आयोग का स्वागत किया। पीड़ा से राहत के लिए बना घर दक्षिणी इटली के सन जुआनी रोतोंदो में पेत्रोल चीना के संत पियो के सपने को साकार करने के लिए बना एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। आयोग की स्थापना 27 मई 2026 को पोप लियो 14वें द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रलेख के माध्यम से की गई थी। मीटिंग के दौरान पोप ने आयोग के काम की प्रगति का अवलोकन किया, फाउंडेशन की आर्थिक और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण पर ध्यान दिया और सन जुआनी रोतोंदो में कासा सोलेफो दे ला सोफ्रेंसा अस्पताल की पुनर्स्थापना को देखते हुए इसके काम की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे सही समाधान की पहचान की गई। आयोग ने अपनी गतिविधि का मार्गदर्शन करने वाली मुख्य प्राथमिकताओं के बारे बताया, स्टाफ के साथ संबंध को स्थिर करना,
इटालियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ सहयोग को मजबूत करना, आवश्यक समाधान हासिल करना और प्रमुख उत्तरदायित्वों को धीरे धीरे कम करना ये गतिविधियां संस्थापक प्रलेख द्वारा कमीशन को दिए गए आदेश का हिस्सा है, जिसका मकसद अस्पताल सेवा को आगे बढ़ाना और इसके संस्थापक के करिश्मे को बनाए रखते हुए सतत स्थिति को वापस लाना एवं पुनर्स्थापना योजना को लागू करना है। पोपलियो ने कमीशन द्वारा अब तक किए गए काम को ध्यान से सुना और जो रास्ता अपनाया गया है उस पर करीब से चलने के उनके पक्के इरादे को पुष्ट किया। भारत में लातिन एकाति कलीसिया के जीवन मिशन एवं प्रेरिता से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हुई। भारतीय एकाति धर्माध्यक्ष सम्मेलन और एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ के अध्यक्ष तथा गोवा एवं दमान के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ सीसीबीआई के उपाध्यक्ष एवं बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सीसीबीआई के महासचिव और रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद एवं सीसीबीआई के उप सचिव डॉक्टर फादर स्टीफन अलाथरा भी थे। यह मुलाकात संत अगस्टीन के पर्व के दिन हुई, जो अगस्टीनियन धर्म संघ के संरक्षक संत हैं और जिससे संत पापलियो चौदहवें भी जुड़े हैं। सीबीसीआई प्रतिनिधियों ने पोप को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित की। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने संत पापलियो चौदहवें को उपहार स्वरूप ओक की लकड़ी से बनी एक पार्टी का भेंट की, जिसमें येसु ख्रिस्त को भारत की कलीसिया से जुड़े 12 संतों से घिरा हुआ दिखाया गया है। पाटिका पर जिन संतों की तस्वीर है वे हैं प्रेरित संत थॉमस, प्रेरित संत बर्थोलोमियो, संत फ्रांसिस जेवियर, संत गोंजालो गार्सिया, संत जोसेफ वास, संत जॉन दी ब्रिटो, संत देव सहायम, कलकत्ता के संत तेरेसा, संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास चावरा, संत उफ्रेसिया और संत मरिया थ्रेसिया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, यह एक बहुत ही दोस्ताना मुलाकात थी और संत पापा हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।